0: सुर दो ते आ
1: सु के जो हिना अजी
2: होजी
3: अजी ला जा दे ना
0: ना चांग दंग दंग छी
2: जान लो युन मी दो
0: छ मे चांग दंग दंग बसे ना आय चांग दंग छी मार बे
1: ना जिन जे ना ल गप छी से पम यु बे तिना दु ए
0: ये
2: लो मी दो आ सेम दे जिन नु मे बे